नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः।

ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय

0: प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला,
1: मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला,
0: मीरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला,
1: मीरा प्रभु राधे श्याम।

0: मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला,
1: मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला,
0: मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला,
1: मीरा प्रभु राधे।